0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर गाना जो चार्ट्स पे आता है वहां रहने का हक नहीं कमाता। कुछ गाने आते हैं शोर के साथ और कुछ गाने आते हैं सच के साथ। इस हफ्ते दोनों हैं। ये है द मिर्ची टॉप 20 और मैं हूं इसका होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड इस हफ्ते का काउंटडाउन कम एक कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, प्यार के बारे में, बेवफाई के बारे में, पहली बार के बारे में, और उस बार के बारे में जो पहली बार जैसा कभी नहीं होता। कुछ सवाल हैं इस हफ्ते जो मैं खुद से पूछ रहा था और आज आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पुराने प्यार वाला गाना अब भी बनाना पॉसिबल है? क्या कोई फ्रेंचाइज दोबारा वो मैजिक छू सकती है जो पहली बार में हुआ था? और क्या बॉलीवुड 2026 में भी वही कहानियां सुना रहा है जो 20 साल पहले सुना रहा था? जवाब इस शो में है। लेट्स स्टार्ट विद गाना नंबर 20।
3: नंबर 20।
2: भूत बंगला का ओ सुंदरी, दूसरा हफ्ता एंड ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब कुछ गाने ऐसे ही करते हैं लेकिन जो आगे है वो अलग है। धुरंधर की दुनिया से दो गाने बैक टू बैक, पहले जाइए सजना ये डेब्यू कर रहा है लेकिन ये गाना आप पहले से जानते हैं, हर एक बोल हर एक सुर। और फिर इश्क जलाकर रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग, अलग ही आग है।
4: नंबर 19।

0: इश्क चलाकर, याद है आपको? एक डायरेक्टर ने लिटरली ऐसा ही कुछ किया था 2006 में, इश्क को जला दिया था, पूरे देश के इश्क को, विद दिस फिल्म कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर, जिन्होंने हमें राहुल और अंजलि दिए, अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करना सिखाया, शैंडलियर वाला प्यार दिया, उसी करण ने एक दिन डिसाइड किया कि वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दो शादीशुदा लोग, गलत इंसान से शादी, और एक दूसरे में सही इंसान को ढूंढते हुए। इंडिया रेडी नहीं था, लेकिन करण ने खुद एक बात कही थी।
1: कितने लोग हैं, कितने ऐसे सारे रिश्ते, कितने ऐसे पीपल हु वेंचर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विदाउट गिविंग इट अ थॉट, रियली विदाउट रियली सिटिंग एंड थिंकिंग इज ही द राइट पर्सन, इज शी द राइट पर्सन। कभी कभी पेरेंटल प्रेशर की वजह से हम शादी कर लेते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कभी सोशल प्रेशर्स होते हैं, कभी प्रेशर औरत का कभी होता है कि आई एम 30-32 एंड आई एम नॉट मैरिड एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड दे सकम्ब टू दिस इंस्टीट्यूशन।
0: ये 2006 में बोला था करण ने, लेकिन ये 2026 में भी उतना ही सच लगता है, इनफैक्ट शायद ज्यादा। तो अब कैंक वापस आ रही है वेब सीरीज के रूप में, और ये वही कहानी होगी, लेकिन हम अलग होंगे। ओटीटी ने हमें मॉरली कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखा दी है, हमने सब देख लिया है, सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखना क्या हम इस बार देव और माया के साथ महसूस करेंगे या फिर से उन्हें जज करेंगे। इवॉल्व होना और डिसेंसिटाइज्ड होना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। इस सवाल का जवाब शायद वो वेब सीरीज देगी। तब तक माय पिक ऑफ द वीक वही गाना है जो उस फिल्म की तरह था, अनकंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और बिल्कुल सच। सोनू निगम एट हिज मोस्ट ब्रिलियंट बेस्ट, कभी अलविदा ना कहना, बाय शंकर एहसान लॉय एंड जावेद साहब। पिक ऑफ द वीक।

0: ख्वाब देखूं और एक छोटा सा हेड्स अप अभी से दे देता हूं, आमिर खान के अराउंड कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में। जो आपने उनका अब तक एक साइड देखा है उससे काफी अलग, बहुत अलग। बट राइट नाउ बात करते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसको एक लेबल में बांधना मुश्किल है। द नेम इज दिलजीत दोसांझ। ऑन पेपर इज एन एक्टर, लेकिन असली पहचान है ऑफ बीइंग अ सिंगर। एक्टिंग उनके लिए प्लान नहीं था, वो एक बाय प्रोडक्ट था, और वही बाय प्रोडक्ट आज एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। पंजाब के बाहर, इंडिया के बाहर कॉन्सर्ट्स आर हाउसफुल, टूर्स आर सोल्ड आउट, और उनकी हर चीज, चाहे म्यूजिक हो या फिर उनका व्लॉग, यार लोग कनेक्ट कर जाते हैं। अब दिलजीत अटेंशन के पीछे नहीं भागता, अटेंशन उनके पीछे भागता है। और फिर आते हैं इम्तियाज अली, जिनका अपना एक खुद का सिनेमैटिक रिदम है। दोनों ने पहले एक साथ काम किया था इन अमर सिंह चमकीला, और अब दोनों वापस आ रहे हैं विद द फिल्म मैं वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इम्तियाज कहते हैं उन्हें दिलजीत का सिंगर वाला साइड उतना नहीं पता था, लेकिन एक्टर दिलजीत, well you gotta hear this।
1: मुझे दिलजीत के बारे में उतना पता नहीं था पहले, इन द वे दैट मैं, मुझे लगता था एक्टर बड़ा अच्छा है। मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक गाना गाया था हमारी पिक्चर में, रौला पै जान दे, सो तब मैं मिला था। बट ही इज अ वेरी एक्सेप्शनल पर्सन, मतलब वो किसी एक्टर की तरह नहीं है, दूसरे किसी एक्टर की तरह उसका सोचना, उसका उसकी हरकतें, जो वे ही बहुत सादा प्लेन रियल आदमी हो, बट ही इज बहुत मजा आया उनके साथ, खास करके इस बार में कि ना उनको ना पूरी, अगर कोई सेंटेंस बोले ना खत्म करने की जरूरत नहीं, वो समझ जाता है और वो आ जाता है उस सुर पे। तो बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ एन आर्टिस्ट, और उसकी समझ बहुत तेज है, उसके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होंगे मेरे ख्याल से।
0: ये चीज अलग होती है, कुछ लोग सिर्फ परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग समझ के परफॉर्म करते हैं। दिलजीत दूसरी कैटेगरी में आते हैं, और जब ये इंस्टिंक्ट मिलता है एआर रहमान के म्यूजिक और इरशाद कामिल के लिरिक्स के साथ, तो गाना सिर्फ सुनाई नहीं देता, अंदर उतर जाता है। ये रहा क्या कमाल है फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, हियर ऑन नंबर 16।

ये था रूप दी रानी, अ 90s सॉन्ग एक नई पैकेजिंग में फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो, स्टारिंग आयुष्मान खुराना द पति, वामिका गब्बी हु आई एम गेसिंग इज द पत्नी, एंड रकुलप्रीत सिंह एंड सारा अली खान हु आई थिंक आर द वो दो। तो टोटल तीन लेडीज हैं, एक हीरो है, सब साथ में नाच रहे हैं, सब काफी खुश हैं एंड सब कुछ ग्लॉसी है। वाओ, इट्स मी सुरेन। एंड बॉलीवुड का एक पुराना गिफ्ट है हमारे लिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत सिंपल पैकेजिंग में दे देता है, चाहे वो प्यार हो, बेवफाई हो, दो दो अफेयर्स हो, और फिर भी इन सब के बीच में एक आइटम नंबर हमें जरूर मिल जाता है, क्योंकि अगर भीड़ अच्छी हो तो सवाल कौन करेगा। Well, I spoke about कभी अलविदा ना कहना, right? उसी सब्जेक्ट पे, एक ही थीम, गलत रिश्ते, गलत choices, लेकिन वहाँ consequence था, दर्द था, discomfort था, लोग सिनेमा हॉल से उठ के चले गए थे, और यहाँ सब उठ के नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फिल्म को सीरियस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है एंड हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी जब वही कहानी, वही सब्जेक्ट, वही सिचुएशन सिर्फ एक शाइनी रैपर में आ जाती है तो एक सेकंड रुकने का मन करता है, पूछना पड़ता है कि क्या हम सच में इवॉल्व हुए हैं या सिर्फ कंफर्टेबल हो गए हैं। खैर, बॉलीवुड का ये चक्कर खत्म नहीं होगा, दैट आई प्रॉमिस। तो एक और ग्लॉसी लव ट्राइंगल, और इज इट समथिंग टोटली डिफरेंट, रूमर्स तो यही कह रहे हैं, बट ये शायद गाना ज्यादा स्टाइल के साथ है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन, दिस इज कॉकटेल 2 एंड दिस इज अरिजीत विद जब तलक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12
2: दे दिल पर देती मुंह तन्ने तजारोना

ये आवाज जो अभी सुनी आपने फहीम अब्दुल्ला की आवारा अंगारा में, वो इस हफ्ते नंबर 11 पे है। लेकिन ये वही आवाज है, इसने एक और कहानी सुनाई थी हमें, एक अलग दुनिया बनाई थी, क्रिश और वानी की दुनिया, सैयारा की दुनिया। माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड मोहित सूरी, आन पांडे, अनीत पद्दा और मिथुन, ये सब एक बार फिर साथ आ रहे हैं एक नई रोमांटिक फिल्म के लिए। और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट तो है, लेकिन एक हिस्सा है दिल का जो थोड़ा डर रहा है, क्योंकि सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक पहली बार था आहान और अनीत के लिए, पहली बार हम सबके लिए, पहली बार। और उस पहली बार का जो शौक होता है ना, जो बटरफ्लाइज होते हैं यार, वो कोरियोग्राफ नहीं हो सकते, वो प्लान नहीं होते, वो बस हो जाते हैं। पहला प्यार दोबारा नहीं होता, फील तो होती है, लेकिन वो वाली फील वो सिर्फ एक बार मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नई फिल्म अच्छी नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं कि शायद प्रॉब्लम फिल्म में नहीं होगी, शायद प्रॉब्लम हम में होगी कि हम सैयारा को इतना प्यार कर चुके हैं कि जो भी अब आएगा उसे देखने से पहले ही कसौटी पर रख दिया जाएगा। और ये फेयर नहीं है, ना फिल्म के साथ ना अपने साथ। तो जाओ एक्साइटेड रहो, लेकिन थोड़ा सा ओपन रहना, और जब तक वो नई कहानी आए, इस कहानी का वो एक गाना

0: ये जो अभी सुना आपने, वाओ, हाड़ी संधु, किरण बाजवा, फुल पंजाबी स्वैग, डेब्यू नंबर 10 इस हफ्ते फ्रॉम वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, डायरेक्टेड बाय वरुण डैड, द कॉमेडी किंग डेविड धवन। सच बताओ, तौबा तौबा की याद आई ना, वही विकी कौशल वाला गाना, वही एनर्जी, वही डीएनए। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। वरुण धवन, डेविड धवन के बेटे, बॉलीवुड के कोट अनकोट नेपोटिज्म पोस्टर बॉय, सिवाय एक चीज के, डेविड धवन सर को पता ही नहीं था कि वरुण एक्टर बनेंगे, विच इज वाई दिस एंट अ नेपोटिज्म स्टोरी एंड विच इज वाई आई लव वरुण। देखो, इस इंडस्ट्री में बाप रास्ता साफ करता है, कारपेट बिछाता है, दरवाजा खोलता है, एंड डेविड धवन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उनके घर में दरवाजा ही बंद था एंड वरुण ने खिड़की से छलांग लगाई।
1: They were talked about films, huh? All of a sudden, ये करण जोहर के बाद चला गया। I want to assist you. So that's how that picture he did now with Maine Uskar. He went there, shooting there, and अचानक क्या होता है? करण comes home. He said, David, I want to introduce him. I said, very good, yeah. Then photo session in the hua. He and Siddharth, they looked young and youthful, very good. And how the film started, some days he used to be very upset also, mm-hmm. used to come. I said, listen, my son, you're damn good. Your confidence is something else. Just remember one mm-hmm. thing. Kandhe pe pair rakho, kood ja. Darna nahi, yeh nahi, kood ja, ho gaya, main kar diya. I remember when the film released, Amit ji, Jaya ji ka message aaya, lambi race ka ghoda hai.
0: लंबी रेस का घोड़ा, बच्चन साहब ने

रिलीज के दिन एक बाप को उनके बेटे के बारे में। ये इन दोनों की चौथी फिल्म है, लेकिन ये जो रास्ता है अपने डैड के साथ काम करने का रास्ता, वो वरुण ने खुद बनाया है। नंबर 9 पे जो गाना है, इट्स गॉट अ कनेक्शन, चांद मेरा दिल, वो भी करण जौहर की फिल्म है। प्रोड्यूसर के रूप में वही करण जिन्होंने पहले दिन दरवाजा खोला था वरुण के लिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में भी और जिंदगी में भी, जो शुरुआत से आखिर तक साथ रहते हैं। ये है गाना नंबर 9, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 7

0: मैं और तू किसी एक फिल्म का गाना नहीं लगता, लगता है जैसे कोई फीलिंग थी जिसको फाइनली अल्फाज मिल गए। धुरंधर 2 का पूरा एल्बम कुछ वैसा ही है, फिल्म भी म्यूजिक भी दोनों साथ हाथ थाम के चल रहे हैं। आई एम सुरेन एंड सच ये है कि ये केमिस्ट्री हमेशा नहीं मिलती, कभी कभी म्यूजिक इतना बड़ा हो जाता है कि फिल्म उसके साए में छुप जाती है। 2013 आशिकी 2, फिल्म डीसेंट थी, इट वॉज वॉर्म, इट वॉज फील गुड, लेकिन वो गाने वो किसी और ही मिट्टी के बने थे। मिथुन ने एक बेट लगाई थी पूरे इंडस्ट्री के खिलाफ, सिंप्लिसिटी पे, सिंसियरिटी पे बेट। जब सब अब बीट गानों के पीछे भाग रहे थे, मिथुन खामोश खड़े रहे।
1: हमारे इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट में प्रेशर ही प्रेशर होता है, क्योंकि हर कोई हिस्ट्री बनाना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू डू समथिंग हिस्टोरिक, कोई भी ये सोच के नहीं आता कि चलो एक मीडियोकर फिल्म बनाते हैं। और मैं उस प्रेशर से अपने आप को कभी नेगेटिव तरीके से नहीं लेता हूँ, मैं उसको इसी तरीके से लेता हूँ कि लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और उनकी उम्मीदों पर मुझे खरा उतरना है। बहुत सारे ऐसे स्लो सॉन्ग्स हैं जिन्होंने बहुत गहरा असर किया है आवाम के ऊपर, तो फिर आज भी क्यों नहीं, क्योंकि आज भी लोग वही है, आज भी इंसान दाल रोटी खाता, तो फिर आज वो ऐसे गाने क्यों नहीं सुनेगा। खाली यह है कि वो सही तरीके से पेश किए जाए और उसमें सिंसियरिटी हो। तो मैं इस रास्ते को मैंने इख्तियार किया और मैंने ठाना कि मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मिथुन तुम अब थोड़ा से अपबीट सॉन्ग्स करो और ये, और मुझे उनके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन उसके पहले मैं ये प्रूव करना चाहता था, मैं ये दिखाना चाहता था कि ये म्यूजिक अपने आप में सादगी से भी आप जो है आवाम को प्रभावित कर सकते हैं, और तुम ही उन्होंने उस बात को सिद्ध कर दिया।
0: सोचो कब सुना था आपने तुम ही हो पहली बार, साथ कौन था, क्या आप अकेले थे? खाने का काम ही यही होता है, वो आपकी पर्सनल हिस्ट्री में घुस जाता है बिना आपसे पूछे। फिल्म स्क्रीन्स पर आई और स्क्रीन से उतर भी गई, लेकिन वो गाने वो आज भी चल रहे हैं, किसी के ईयरफोन्स में, किसी के दिल में उनकी आवाज बनकर। 13 years, ये मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, अभी भी फील्स लाइक यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम।
2: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 5

गहरा हुआ 5 महीने एंड अब भी टॉप 5 में। और सुनो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमारे कण कण में घुस जाते हैं परमानेंटली। फर्क बस यही होता है दैट द सिंगिंग कॉम्पोजिशन एंड सबसे जरूरी द लिरिक्स तीनों एक साथ एक ही वक्त में बिल्कुल सही जगह पर होते हैं। जैसे एक और गाना विच आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम रॉकस्टार।

0: मोहित चौहान, ए आर रहमान, निशात कामिल, द एंटायर रॉकस्टार एल्बम, तीनों फायरिंग साइमल्टेनियसली। एक भी चीज ज्यादा नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। एक और गाना ले लीजिए।
1: तू है

0: अरिजीत, सचिन जिगर, वायु, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस बिल्कुल सही। और आज भी एक गाना सबके जहन में घूम रहा है,
1: नंबर 4।
2: तू

9 महीने एंड अब भी टॉप 5 में, इस हफ्ते नंबर 4 पर। ये गाने अडल्टरेटेड नहीं है, दीज आर प्योर सॉन्ग्स, और इसलिए ये रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि दो जायंट्स एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, दोनों अपने जॉनर के सबसे बड़े नाम है, और गाना वो अच्छा होता है, चार्ट्स पर भी होता है, इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर भी बन जाता है बिकॉज इट्स 4 places अप। लेकिन क्या ये गाना 9 महीने बाद टॉप 5 में रहेगा? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ गाने मॉन्यूमेंट्स होते हैं और कुछ गाने बस एक खूबसूरत मोमेंट होते हैं। ये है इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर, अप 4 places, अरिजीत सिंह विद निकिता गांधी, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड लिखा है कुमार भाई ने। तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। नंबर 3।

0: ग्रीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची

0: Mirchi. It's hot. Only on Mirchi. It's hot.
1: Number 2.

RARE, and we might be getting more of SP Chaudhary Aslam. It's me, Suren Sundaram, and Sanjay Dutt ek baar phir se hain in the spotlight. Interesting baat ye hai, ye sirf ek comeback nahi lagta, ye ek direction lagta hai. कुछ दिन पहले संजू बाबा ने बल्लू की वापसी अनाउंस कर दी, द सीक्वल टू खलनायक. और तब एक चीज क्लिक कर गई, ये पहली बार नहीं हो रहा है. गदर एक प्रेम कथा वापस आती है, खूब पैसा कमाती है. बॉर्डर फिर से एक्टिवेट होती है एंड अगेन खूब पैसा कमाती है. तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें देखते वक्त हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं. हम शायद फिल्म नहीं देख रहे, शायद वो फीलिंग देख रहे हैं जो पहले कभी अटैच हो चुकी है इन फिल्मों के साथ. क्योंकि जब आप किसी सीक्वल के लिए थिएटर में जाते हैं, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं जाते, आप अपना वर्जन लेके जाते हैं और फिर फिल्म उसको कंफर्म करती है. इसलिए ये फिल्म्स काम करती हैं, नॉट बिकॉज दे आर शार्पर बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर. और फेमिलियरिटी एफर्ट नहीं मांगती, सिर्फ रिकॉल मांगती है. शायद इसलिए बॉलीवुड आजकल कहानियां कम लिख रहा है और मेमोरी ट्रिगर ज्यादा कर रहा है. एक थॉट छोड़ के जाता हूं, नया बनाना मुश्किल होता है लेकिन जो पहले से काम कर चुका है उसे दोबारा बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिल्म्स या अपनी ही पुरानी यादों का अपग्रेडेड वर्जन? Think about that. क्योंकि अब वक्त है इस हफ्ते के नंबर वन गाने का, डोमिनेटिंग द टॉप स्पॉट फॉर 11th टाइम. दिस इज शरारत फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची. नंबर

0: 11 बार 11 टाइम्स ऑन नंबर 1 मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल, आई एम डन फॉर दिस एपिसोड. मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट.
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट 98.3 मिर्ची. इट्स हॉट
2: मिर्ची. इट्स हॉट.

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है दोस्तों, डीजे रिचर्ड मिर्ची और ओयोंतिका आपके साथ, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर। वी हैव अ फैंटास्टिक मैशअप ऑफ वी फाउंड लव एंड रांचन रांचन। फन फैक्ट, रिहाना फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस। वी फाइंड लव नेक्स्ट टू अ पुचका स्टॉल, है ना।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक वंस अगेन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयंतिका। जिनी इन अ बॉटल, इफ यू रब अ बॉटल इन माय सिटी बहुत कुछ निकल के आता है। तो चलो

Hi, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love.

0: मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
1: You are partying with Oyontika and DJ Richard on Club Mirchi. Club

पीपल क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. नाउ द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, क्या मुझे प्यार है और एम आई जस्ट कोल्ड एंड ड्रामेटिक. लेट्स गो.

रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ और ऑफ कोर्स फिर से करते हैं धूम अगेन. दिस इज वन कोरियोग्राफी व्हिच टेस्ट्स आवर फिटनेस. मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट पास.

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। तो गाना डेडिकेट करते हैं यार, गाने का नाम है दुनिया हसीनों का मेला।

इसकी करोगे? आ जाओ यार इंस्टाग्राम फेसबुक पे, माय नेम इज ऑयंतिका AYANTIKA। आज के लड़के आई टेल यू।

वेलकम बैक। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो। और इस शो का असली खिलाड़ी कौन है? रिचर्ड यार। इफ यू लाइक व्हाट ही डज ऑन द शो देन गिव हिम अ शाउट आउट। ही गोज बाय डीजे रिचर्ड। ओह

बची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. नाउ द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, क्या मुझे प्यार है और एम आई जस्ट कोल्ड एंड ड्रामेटिक?

on Club Mirchi. DJ Richard Mirchi और योंतिका आपके साथ. And I feel, अगर आप ये मान सको कि आप भी गलत हो सकते हो, there is an opportunity of growth always. So the song goes out to all the people who doubt themselves and are overthinkers. गाने का नाम है हाँ मैं गलत.

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
2: On a ride.

0: no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás.
1: Club Mirchi जारी है with DJ Richard and Mirchi Oyo Antega. This is the time जा हमारा दिल डूब जाता है गरम गरम मोमो के चटनी में. I

बजी जा रही है मैं डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। तो गाना डेडिकेट करते हैं यार, गाने का नाम है दुनिया हसीनों का मेला।

दोस्ती करोगे? आ जाओ यार इंस्टाग्राम फेसबुक पे, माय नेम इज ओयंतिका AYANTIKA। आज के लड़के आई टेल यू।

0: जानम समझा करो
1: Mirchi, it's hot.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
4: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
0: शो माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला क्या था, बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न, यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ, यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है। ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था। सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज टेंड टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस। यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को, और आई थिंक ये आइडिया है। मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलेवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर, मींस सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी की स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल, उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं, एक बंदर कौन है। और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड, बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है। और फिर वो कहता है, बंदर बहुत ही बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम, तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है, एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ,

0: ट्रीट मी नाइसली, और अगर तुम यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं। सबको हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है। हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे ये सो एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
0: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
0: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गांव गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
1: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में इसे मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसको लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose.
3: All right. Thank you so much for the answer. Thank you.
1: Welcome, Akshata.
3: Yeah.
1: तो अक्षता का question was about सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है, ये traditional color है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। Normally जो male gods होते हैं उनको लाल रंग very rarely दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो prosperity लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
0: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू। नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे। लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है। बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है। पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है। अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम। तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक। इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है। वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना। सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन। जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस। So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
4: हमें ही नहीं हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कब और क्यों बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन, योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछता है कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं। एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। And we all have a Hanuman inside us. हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काईज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है and I'm a huge fan of yours.
0: Thank you so much.
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाति। सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है, जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: लगता है कि मिलेनियल्स का दूसरा नाम होना चाहिए बीच का बंदर।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. अभी देखो ना यार, ये कल परसों ही की बात है. Actually हुआ क्या कि मेरा नेफ्यू आया हुआ है. अभी घर में सिनारियो ये था कि मैं सब्जी बना रही थी लौकी की, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार लौकी की सब्जी में ना अगर टमाटर डाल दे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा. लेकिन मम्मा ने दूर से ही आवाज लगा के कह दिया कि सुनो सारा, सब्जी के अंदर टमाटर मत डालना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. वहीं दूसरी तरफ मेरे नेफ्यू के लिए सैंडविच बन रहा था, और सैंडविच के अंदर उसने साफ साफ बोल दिया था कि मेयो अगर सैंडविच में डलना है तो वो डलना है, बिना मेयो के मैं सैंडविच नहीं खाने वाला. और मुझे ना हंसी भी आ गई और खुद पे फक्र भी महसूस हुआ. पता है क्यों? बिकॉज मुझे यहाँ पे रियलाइजेशन हुआ कि हम जो मिलेनियल्स है ना, हम बीच का बंदर है. हम ना हमारे बड़ों की भी सुनते हैं और हम हमारे छोटों की भी सुनते हैं. हाँ, हम अपने मन का काम करते हैं, इन दोनों की सुन के खुद बैलेंस कर रहे होते हैं और बन जाते हैं बीच का बंदर. लेकिन यहीं पर ही ना, देखो हंसी तो आई इस बात पर कि यार क्या है ये कि ऊपर वाले की भी सुन रहे हो और नीचे वाले की भी सुन रहे हो, और खुद की तो सुनने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. लेकिन फक्र भी महसूस हुआ मुझे इस बात के लिए कि यार हम इन दोनों जनरेशन को समझते. मतलब जो हमसे अगली जनरेशन है वो शायद अपने बड़ों को इतनी अच्छी तरीके से ना समझे, और जो हमसे बड़ी जनरेशन है वो अपने छोटों को इतनी अच्छी तरीके से ना समझे, लेकिन हम दोनों को समझते हैं. तो ये जो बीच का बंदर है ना, ये सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, अकलमंदी के लिए भी जरूरी है. क्या बोलते हो? चलो जी, इसी के साथ बीच के बंदरों के लिए यानी कि मिलेनियल्स के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल देती हूँ. आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: याद है आपको, एक मूवी आई थी आमिर खान की, और मैं ये सोच रही थी कि आमिर खान इस मूवी में क्या कर रहे हैं यार। और ये आमिर खान की इकलौती ऐसी मूवी होगी जो मैंने आज तक नहीं देखी। दैट वाज 1947 अर्थ।
2: मिर्ची वीसीआर।
3: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के लिए बड़े चर्चे थे। हम बच्चों को बोल दिया गया था कि ये बड़ों की फिल्म है, बच्चों की नहीं है। तो आज तक भी मैं बड़ी नहीं हुई और मैंने ये फिल्म देखी नहीं। अब आपसे बात कर रही हूँ तो शायद हो सकता है कि आज बाय द एंड ऑफ द डे देखने का ख्याल बन जाए। लेकिन बहरहाल सीन ऐसा है कि ये जो मूवी है इसका टाइटल 1947 अर्थ नहीं रखा जाने वाला था। एक्चुअली हुआ क्या था कि दीपा मेहता जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, जब वो इस फिल्म को शूट कर रही थी ना, तो काफी सारे लोगों ने पूछा कि फिल्म का नाम क्या है। तो जब उन्होंने बोला अर्थ, तो लोगों ने उनसे कहा अच्छा अर्थ, लेकिन ये जो अर्थ आपने मूवी का नाम रखा है, ऐसी एक मूवी तो महेश भट्ट ने भी बनाई थी। जब दीपा मेहता को ये समझ में आया कि अर्थ और अर्थ के अर्थ में लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है, तो उन्होंने इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए उसके आगे 1947 लगा दिया और वो हो गई 1947 अर्थ। लेकिन आपको पता है, इससे पहले वो इस फिल्म का नाम रखने जा रही थी आइस कैंडी मैन, विच इज अ फैबुलस नेम। हाँ, मतलब मैंने आज तक ऐसी कोई मूवी नहीं सुनी जिसका नाम था आइस कैंडी मैन। एंड वेल, इस फिल्म में आइस कैंडी मैन बनने वाले थे अक्षय खन्ना और चंद्रचूड़ सिंह में से कोई एक। इन दोनों को साइन किया गया था लीड रोल्स से, लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इन दोनों को ही रिप्लेस कर दिया गया और फिल्म में आ गए आमिर खान और अक्षय खन्ना के भाई राहुल खन्ना, जिनकी ये पहली मूवी थी बाय द वे। लेकिन राहुल खन्ना को ये फिल्म देखने के बाद लगा था कि उनका करियर तो हो गया है ठप। कैसे, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: राहुल खन्ना ने जब अपनी डेब्यू फिल्म 1947 अर्थ देखी, सो ही जस्ट वॉक्ड आउट एंड कॉल्ड हिज एजेंट, और पता है उन्होंने उनसे क्या कहा?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, राहुल खन्ना ने अपने एजेंट को कॉल लगाकर ये बात जाहिर करी कि उनको ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपने एजेंट को बोल दिया कि यार मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के बाद मैं कभी एक्टिंग करना चाहूंगा। लेकिन ये फिल्म टर्न्ड आउट टू बी द अदर वे राउंड, बिकॉज़ इस फिल्म के तो चर्चे होने लगे थे। फिर उन्होंने जब इस फिल्म को सेकंड टाइम देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, शायद ये फिल्म अच्छी लग रही है। एंड देन धीरे धीरे करके ही वॉज हैप्पी अबाउट द पार्ट दैट ही प्लेड इन द फिल्म। एंड इन एन इंटरव्यू ही सेड कि उन्होंने शायद अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल लिया था, और वो बहुत ज्यादा ही जजमेंटल हो रहे थे खुद की ही परफॉर्मेंस को लेकर, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर ली थी। हालांकि ऐसा था नहीं, उनका परफॉर्मेंस वॉज प्रिटी गुड इन द फिल्म और काफी लोगों ने उसकी तारीफ करी थी। लेकिन पता है राहुल खन्ना अपने आप को इतना प्रेशराइज क्यों फील कर रहे थे? बिकॉज इस रोल को करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी थी। सिंस ये जो फिल्म थी ये 1947 पर बेस्ड थी, तो उन्होंने 1947 के बारे में खूब पढ़ा, पूरी हिस्ट्री पढ़ी। एंड सिंस वो एक मास्टर का रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म में, तो उन्होंने तो मसाज के लिए लेसन्स भी लिए थे, और मॉडर्न दुनिया से अपने आप को इतना कट ऑफ कर दिया था कि वो ना तो टीवी देखा करते थे ना न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, ताकि वो मेंटली अपने आप को 1947 में ही समझे, ये समझे ही नहीं कि वो आज के इंसान है। बस अब इतनी मेहनत करने के बाद इंसान को खुद से एक्सपेक्टेशन तो होगी ना बॉस। या लेकिन एक बात बताओ, राहुल खन्ना का मसला क्या है यार? मतलब काफी सारे एक्टर्स जो उनकी उम्र के हैं वो सब एज कर रहे हैं, लेकिन देयर समथिंग अबाउट हिम कि वो एज नहीं कर रहे हैं, उनकी तो एज रिवर्स में जा रही है। ही इज एजिंग लाइक अ वाइन यार। रिसेंटली मैंने उन्हें एक कार के एड में देखा था, एंड आई वाज लाइक, मुझे तो इस बंदे को पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, मैं इस बंदे को इतने जमाने बाद टेलीविजन पे देख रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदा बिल्कुल वैसा है जैसे पहले था, ज्यादा कुछ बदला नहीं है बंदे के अंदर। लेकिन कैसे जानेंगे कैसे? अभी के लिए तो कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: Coca-Cola. अभी यही वर्ड ना बिना होठों को टच किए बोल के बताओ। हाँ, फंस गए ना।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड भले ही आज मैं डाइट कॉन्शियस होकर बिल्कुल ऑफ कोला ड्रिंक्स हो गई हूँ, लेकिन एज अ किड एड्स ये डिसाइड किया करते थे कि कौन सा कोला ड्रिंक खरीदना है, क्योंकि कभी कोई ड्रिंक कोई विनर स्कीम लाता था तो कभी कोई और। मैं तो ना बिल्कुल बिक जाती थी टू द मार्केटिंग आइडियाज, एंड आई यूज्ड टू कलेक्ट एंड कीप कोक की बॉटल्स के ढक्कन, बिकॉज़ आई यूज्ड टू फील लकी कि क्या पता ऐश्वर्या राय से मिलने का मौका ही मिल जाए। दो आई वॉजंट अ क्रेजी फैन ऑफ हर्स, लेकिन आई डेफिनेटली वॉज स्टारस्ट्रक। और राजपाल यादव का ये एड, विच वॉज अ फन थिंग ऑन टीवी एट दैट टाइम, याद है आपको?
3: आपका फूटू रामू जी।
4: रामू जी,
5: इनकी तो किस्मत बदली यार।
2: लकी रामू थे ये इस एड के, और हम सोचते थे कि जब रामू लकी हो सकता है तो हम क्यों नहीं। कीप ट्राइंग, एंड ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी कभी ऐश्वर्या राय तक नहीं पहुंची। हाँ, लेकिन मेरी घड़ी जरूर आगे बढ़ गई, वक्त बदल गया, मैं बड़ी हो गई और समझ में आ गया कि ये सब मार्केटिंग गिमिक्स थे यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपको ध्यान होगा कि देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब रानी और अभिषेक ने काफी सारी मूवीज एक साथ की थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट ऑल स्टॉप्ड, बट व्हाई?
1: नब्बे की गप्पे।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। तो आज रानी और अभिषेक अपनी अपनी लाइफ में हैप्पीली मैरिड हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब इन दोनों के पर्सनल लाइफ में साथ होने की खबरें सुनाई दे रही थी, और ये दोनों साथ में अच्छे भी बहुत लगते थे यार। फिर हुआ क्या, जहां हमें लगा था कि दीज टू विल प्रोबेबली एंड अप गेटिंग मैरिड, अभिषेक और ऐश्वर्या की एंगेजमेंट की खबर आई और हम सब रानी और अभिषेक की जोड़ी के फैंस का दिल टूट गया। और इनके ब्रेकअप को लेकर कई सारे स्पेकुलेशंस रहे हैं, जिनमें से ये भी कहा जाता है कि जया जी को रानी नहीं पसंद थी, एंड ब्लैक मूवी के बाद और उसमें रानी और अमित जी के किसिंग सीन के बाद जया जी वॉज मोर अगेंस्ट हर बींग द बहू ऑफ हर हाउस। वैसे यार बात कुछ भी हो, मेरे अंदर का जो रानी अभिषेक फैन है ना, आज भी अक्सर सोचता है कि अगर ये साथ होते तो कितना सही होता ना। एटलीस्ट हमें अभिषेक और रानी की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ज्यादा देखने को मिल जाती, क्योंकि कुछ भी कहो यार, दोनों ऑन स्क्रीन जब साथ हुआ करते थे तो कमाल करते थे और धमाल करते थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम को देखें और अगर आप सैफ के 20s वाले इंटरव्यूज देखेंगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि इब्राहिम इज जस्ट लाइक हिज फादर. द ओनली डिफरेंस इज शायद इब्राहिम इज अ बिट मोर सीरियस एट दिस एज देन सैफ वाज एट दिस एज एट दैट टाइम.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड 1991 में हुआ ये था कि सैफ अली खान को सतीश ओरी ने साइन किया था फॉर हर होम प्रोडक्शन और उन्हें एक्टिंग स्कूल भेजा गया, बड़ा अमाउंट पे किया गया एंड हर प्लान वॉज टू लॉन्च हिम इन अ फिल्म एंड द फिल्म वॉज दिल को लाख संभाला जो कि ट्विंकल खन्ना के ऑपोजिट थी और डायरेक्ट कर रहे थे आनंद महेंद्रू जो कि सैफ अली खान के बहुत अच्छे दोस्त थे. अब राहुल रवेल को जब इस फिल्म के बारे में पता लगा तो वो चाह रहे थे कि वो सैफ अली खान को पहले साइन कर ले. जब राहुल रवेल सतीश ओरी के पास पहुंचे ये पूछने के लिए कि वो अपनी फिल्म बेखुदी में सैफ के साथ काम करके उसे पहले रिलीज कर ले क्या, तो सती ने मना कर दिया. और इसी दौरान हुआ ये कि इस फिल्म के डायरेक्टर जो कि सैफ के बहुत अच्छे दोस्त थे आनंद महेंद्रू, उनका आर्ग्यूमेंट हो गया विद सती एंड ही लेफ्ट द फिल्म. इसी के चलते सैफ अली खान वॉज द नेक्स्ट पर्सन टू लीव द फिल्म. और तब राहुल रवेल अगेन अप्रोच सैफ अली खान फॉर डूइंग दिस फिल्म सिंस ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्लियर फिल्म. सैफ ने हाँ बोल दी और फिल्म की शूटिंग चालू हो गई. लेकिन कुछ ही महीनों बाद मामला कुछ उलट पुलट सा होने लगा. एंड वेल ये भी कहा जाता है कि शर्मिला जी जो कि सैफ अली खान की मदर हैं, उन्होंने रवेल साहब को पहले ही वॉर्न कर दिया गया था कि सैफ जो है वो थोड़े लेट राइजर है. इनफैक्ट देयर वर डेज जब शूट के लिए सैफ आया ही नहीं करते थे और सैफ के इसी ना आने और शूट ना कर पाने की वजह से राहुल फाइनली गॉट फ्रस्ट्रेटेड और सैफ की जगह उन्होंने कमल सदाना को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया एंड फाइनली द फिल्म वॉज मेड. तभी तो मैंने कहा कि सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान जो है इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं. लेकिन गिवन द फैक्ट कि इब्राहिम आज के स्टार किड है, आई थिंक ही इज मोस्ट सीरियस रिगार्डिंग लाइफ एंड करियर. हाँ, जो कि सैफ अपने करियर में काफी लेट हुए. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Tell me one thing. आप सैनिटाइजर पर्सन हो या पेपर सोप पर्सन?
2: ये है
3: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मैं तो अब भी पेपर सोप पर्सन हूँ यार, कॉज इसके साथ ऐसा वैसा रिश्ता नहीं रहा है। लंबे ट्रेन ट्रैवल में तो इसने बड़ा साथ दिया यार, जेब में फिट हो जाता था और आसानी से डिसॉल्व भी हो जाता था। हालांकि आज बड़ी फैंसी पैकिंग में पेपर सोप्स आ गए हैं, लेकिन आई स्टिल लाइक पेपर के कवर में 20 सोप स्टेपल्ड वाली पैकिंग। ट्रेन ट्रैवल्स में आई रिमेम्बर कि कैसे उस इंसान की ना बड़ी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी जिसके पास पेपर सोप्स रखे होते थे, और कैसे वो राशनिंग करते हुए हमें पेपर सोप्स दिया करते थे कि नहीं नहीं नहीं नहीं ज्यादा नहीं हाँ। एंड इनफैक्ट कभी कभी तो हम बिना बात के ट्रेन के सफर में हाथ धोने के बहाने बनाकर पेपर सोप निकलवा लिया करते थे, क्योंकि पेपर सोप यूज करना फेल्ट सो कूल यार। बाबू मुशाए, इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एक साबन भी बट्टी से लिक्विड सोप तक का सफर तय कर चुका है, और एक साबन की भी अपनी स्ट्रगल्स और कहानियां रही होंगी। बस कोई सुनने वाला चाहिए और आपको 90s का नॉस्टैल्जिया सुनाने वाली मंजे मैं। तो आगे बढ़े टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम मिशन कश्मीर, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आम पापड़।
1: यादों को चिट्ठी।
0: तुम आम नहीं, बड़े खास हो, बचपन का खट्टा मीठा एहसास हो। पर जाने मार्केट में क्या हलचल हुई कि अब तुम फिजिकली दूर हो, लेकिन स्टिल दिल के पास हो। वो पीली पन्नी में बंद के तुम आते थे और अपने अंदर खट्टे मीठे स्वाद जो तुम लाते थे। आज इंटरनेशनल चॉकलेट्स तक घर पर आ जाती हैं, पर उनमें भी तुम जैसी बात नहीं आती है। परत परत बारीकी से निकाल कर तुम्हें हम खाते थे। एक पैकेट जितना लंबा चल सके, यही हम दिल से चाहते थे। बिंजिंग के नाम पर आज जाने क्या क्या खा लिया जाता है, फिर भी रूह कहती है मजा नहीं आता है। तुम आ जाओ नजर किसी किराने की दुकान पर तो मजे भी कहेंगे कि देखो हमारा प्यारा आम पापड़ आया है। कई दुकानों पर तुम्हारे लिए पूछा, लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। और फिर एक दिन मेरी कजिन ने तुम्हें और तुम्हारे जायके को जुबान पर जब बिठाया ना, तो तुम्हारी यादें और ताजा हो गई। मिस यू माय बचपन के डिजर्ट एंड स्नैक, प्यारे आम पापड़, तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में ये गाना फ्रॉम द फिल्म डुप्लीकेट इस कैसेट के साइड ए का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: मेरे महबूब मेरे सनम, ओए होए क्या गाना लिखा और गाया था यार। और इसके म्यूजिक की तो दाद नहीं, पूरी की पूरी 32 ही दे देनी चाहिए यार। एंड यू नो, मेरे अकॉर्डिंग ये गाना जो है, ये जब प्यार शेयर होता है ना, तो उसका फेज 3 होता है। हाँ, क्योंकि फेज 1 में क्या होता है कि आंखें मिलती हैं, एक दूसरे को देख कर इंसान पसंद करता है। फेज 2 में क्या होता है कि इंसान जो है वो एक दूसरे को दोस्त मानने लग जाता है, समझने लग जाता है, लेकिन फिर भी ना अभी कमिटमेंट नहीं आया होता है, टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं। और फिर आता है फेज 3। अभी क्या है कि जब ये फेजेस आ रहे होते हैं ना, तो एक बंदा जो है वो स्पीड से चल रहा होता है, कि उसका फेज 1 जो है वो तो चुटकियों में आ जाता है, और फेज 1 आते के साथ ही फेज 2 आ जाता है, और फेज 3 पे वो कब जंप कर जाता है उसको भी नहीं पता लगता है। लेकिन जो दूसरा साथी है ना, उसको फेज 3 पर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी फेज 3 पर है वो तो इंतजार कर रहा होता है ना बेचैनी से कि यार ये कब इजहार करेगा, ये कब उस तरीके से कमिटमेंट अपनी दिखाएगा जिस तरीके से मैं फील करती हूँ या मैं फील करता हूँ। और जैसे ही वो कमिटमेंट दिख जाती है और ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान मेरी मोहब्बत में अब घायल और कायल हो चुका है, तो इंसान यही कह रहा होता है कि कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इजहार करोगे। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। तहे दिल से शुक्रिया ही निकल रहा होता है उस वक्त, क्योंकि क्या है ना कि आजकल के टाइम में तो एक और चीज है, एंजाइटी बढ़ जाती है ना इंसान की कि कहीं ये रिश्ता चला नहीं तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला जोन भी तो आ जाता है। लेकिन मुबारक हो अगर आप इस गाने वाली फेज पर पहुंच चुके हो तो। और इसी के साथ ये गाना अब आपके लिए लगाते हुए मेरा टाइम हो चुका है कि मैं आपसे कह दूं हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: It's hot. Mirchi. It's hot. Radio Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. It's hot.

में गाओ हरे लाऊं चबाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो, नाचो।

0: 93.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बहुत सारा टाइम और बहुत सारी पेशेंस के साथ देखनी होगी ये सीरीज।
1: OTT एंड चिल।
0: नाम है इसका मटका किंग, जो फिलहाल ट्रेंड कर रही है ऑन नंबर वन इन इंडिया एंड UAE। हां जी, अभी तक ये सिलसिला बरकरार है। बाकी आपको बता दूं, इस सीरीज में विजय वर्मा लीड रोल निभाते नजर आ रहे हैं विद साई तमहनकर, कृतिका कामरा, सिद्धार्थ जादव एंड गुलशन ग्रोवर इन लीड रोल्स एज वेल। वैसे 17th ऑफ अप्रैल से ये सीरीज प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम कर रही है, जिसमें विजय वर्मा ने ब्रिज भट्टी का किरदार निभाया है, जो 1960s और 70s के बॉम्बे की कहानी है, जहां मटका गैम्बलिंग चला करती थी। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो सबसे पहले चीज, आपको ये कहानी जानने में काफी मजा आएगा थ्रू द सीरीज। एंड जिस हिसाब की एक्टिंग है, द इंटेंसिटी दैट एवरी कैरेक्टर ब्रिंग्स इन इज रियली अमेजिंग। बट यस, देयर इज वन। अगर आपको डूम स्क्रोलिंग की आदत है, अगर आपको सेकंड्स वाली रील्स पसंद हैं, तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस टू वॉच दिस सीरीज। वन गो में शायद से आप खत्म ना कर पाए, बट अगर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, इज व्हाट आई बिलीव इन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: This is something special.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: शूट पे पहुंचे शार्क्स।
2: बॉलीपीडिया।
1: नहीं यार बाबू मोशाय, शार्क टैंक वाले शार्क्स नहीं, बट लिटरली शार्क्स पहुंच गए थे इस फिल्म के शूट के दौरान। आज बात कर रही हूँ फिल्म ब्लू के बारे में, जो साल 2009 में आई थी, डायरेक्टेड बाय एंथनी डिसूजा। वेल, इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, राहुल देव, लारा दत्ता, कटरीना कैफ, जायद खान, कबीर बेदी जैसे एक्टर्स थे। एंड इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स सीन है आपको याद होगा, अंडर वाटर वाला है। तो इसकी शूटिंग जब एक रैकेट शिप में हो रही थी ना, उस दौरान अक्षय कुमार को उनके फोरहेड पे चोट लग गई, जिसमें से खून भी निकला। एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर स्पॉट पे शार्क्स पहुंच गई, जिसके बाद स्टंट एक्टर्स ने अक्षय कुमार को रेस्क्यू भी किया। बट अक्षय कुमार बीइंग द खिलाड़ी वाज रेडी टू गो बैक इनसाइड द वाटर फॉर सेकंड टेक, लेकिन डायरेक्टर साहब ने बोला कि भैया देखो, हम खुश हैं, जो ले लिया वो काफी है, अब जान माल का नुकसान नहीं झेल सकते हम। खैर, ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जो एक फिल्म बनाने में बनती हैं। बस वही कहानियां मैं आप तक लेकर आती हूं। तो एक काम करो, आप अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में मुझे बताओ, एंड आई विल गेट सम अमेजिंग इन्फो अबाउट दैट इज वेल। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से आप मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Authentic, original, and better than our rival.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।